एक वस्त अगोचर लहिया एक वस्त अगोचर पाई घट दीप करिहा समाई कह कबीर।

0: थाओ।
1: कुदरत कवण का विचार, वारिया न जावा एक बार।
0: जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार।
1: हाथ पैर तंदे, पानी धोते उतरस खे।
0: मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ तोए।
1: मत पापा के संग, ओ तो पहनावे के।

0: devi sohan sada sware
1: gaveh end enda sun baithe devtyan dar nale
0: gaveh siddh samadhi andar gavan sadhi vichare
1: gavan jati sati santokhi गावै वीर करारे
0: गावन पंडित पण रखी सर जुग जुग वेदा नाले
1: गावै मोनिया मन मोहन स्वर्गा मछ प्याले
0: गावन रतन उपाए तेरे अठसठ तीरथ नाले
1: गावै जोध महाबल सूरा गावै खानी चारे
0: गावै खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे
1: सही तुदनो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले
0: और केते गावन से मैं चितना आवन नाने क्या विचारे
1: सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई
0: हैपी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई
1: रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जन पाई
0: कर कर वेखे कीता अपना जिव तिसी वडियाई
1: जो तुस पावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई
0: सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन जाई
1: मुंदा संतोख सरम पर झोली ध्यान के करे बेभूत
0: चिंता काल कवारी काया जुक्त डंडा प्रतीत
1: आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत
0: आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
1: भुक्त ज्ञान दया भंडारण घट घट बाजे नाद
0: आप नाथ नाथी सब जाती रिद्ध सिद्ध अवरा साद
1: संयोग वियोग द्विकार चलावे लेखे आवे भाग
0: आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत

0: के अशर देसे के अपिज पेसे के अगंज करमे के अपंज भरमे
1: के अपिज लोके के आदित सोके के अवधूत बरने के बहुत करने
0: के राजिंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के अशोक बरने के सर्वा अपरने
1: के जगतंग कीर्ति है के शतरंग क्षत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुपम अनुप
0: के आद अदेव है के आप अपिव है के चतरंग विहीने के एक अधीन है
1: रोजी रजाई के रहीम में रिहाय के की पाक वैव है के गैबल गैब है
0: के अफूल गुना है के शाहनशाह है के कारण को निंद है के रोजी दहिंद है
1: के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है
0: के त्रबत्र माने है के त्रबत्र दाने है के त्रबत्र गौने के त्रबत्र पौने
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
0: के त्रबत्र दीन है के त्रबत्र लीन है।

0: सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
0: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
1: सावल छंद व्यापसाद
0: नमो नरक नाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते
1: परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते
0: अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते
0: निरसाकं सरीक है हम तो अमीक है सदैविंग प्रभा है अजय है अजा है
1: भगवती शंत व प्रसाद
0: हे जहर जहूर है के हाजर हजूर है हमे सुलसलाम है समस्त कलाम है
1: साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है
0: के रोजी दहिंद है के राज करीहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है
1: गनीमल खराज है गरीबल निवाज है हरी पल शिकाने है हरासल फिकाने है
0: कलंकमी प्रणास है समस्तल निवास है गंजुल गनीम है रजाई करीम है
1: समस्तल जुबान है के साहिब किरा है के नरकन प्रणास है वैसल निवास है
0: के सरबुल गवन है हमेशल रवान है तमामुल तमीज है समस्तल

0: जपा जप है तप तप है कृता कृत है अमृता अमृत है
1: अमृता अमृत है करना कृत है कृता कृत है धनी कृत है
0: अमृतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता अमृत है
1: जपा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है खल खायक है
0: स्वयंवर है करुणालय है नृप नायक है सर्प पायक है
1: पंजन है यर गंजन है रिप तापन है जप जापन है
0: अकलांकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है
1: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बसे जस के जसे।

0: रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
0: नमो जुर जोदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने
1: नमो करे कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग पूते
0: अलंकंक रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बाक बंके
1: अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक
0: जय लय भय
1: अभू अजू अनास का
0: अगंज पांजा।

सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करी मुल्क निंदा समस्तुल निवासी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं स्वांग सर्वदा।

0: परलोक गवायो।
1: बात कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो।
0: साच कहो सुन लियो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभायो।
1: काहू ने पान पूछ तरियो सिर।

0: किसी को हमारी सकल प्रयाजने आप सवारी कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: पीर पछाने कट कट के पट पट की
0: जाबुद करक करा कर तारा

उधार ज्यों सुपना अर्पे खना ऐसे जग कौ जान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान निसदन माया कारने प्राणी डोलत नीत कूटन मैं नानक को नारायण जिह चीत जैसे

कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम प्राणी राम ना चिताई मद माया कै अंध कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद सुख मैं बहु संगी पाए दुख मैं संग न कोए कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भज मना निरभय पावह बास जतन बहुत मैं कर रहयो मिट्यो न मन को मान दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लिहो भगवान बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान करण हो तो सो ना कियो परयो लोभ कै फंद नानक समयो रम गयो अब क्यों रोब ते अंध मन माया मैं रम रहयो निकसत नाह न मीत नानक मूरत चितर ज्यों छाड़त नाह न पीत नर चाहत कछ और औरै की औरै पई चतबदर उठ गौर नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए जगत भिखारी फिरत है सब को दाता राम कहो नानक मन सिमरत पूर्ण होवै काम झूठै मान कहाँ करै जग सुपने ज्यों जान इन मैं कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान गर्व करत है देह को बिन सैशन मैं मीत जिह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत जे कट सिमरन राम को सो नर मुखता जान तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जिह प्राणी कह नाहे मन जैसे सुकर सुवान नानक मानो ताहे तान स्वामी को गृह जौ सदा स्वान तजत नहीं नैत नानक हि बिदार भजौ एक मन हुए एक चित

आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दो तां गावो हरी की राम जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारी कह नानक मन मेरी सदा रहो हर नाले साची साहिबा क्या नाहीं घर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देह सु पावै सदा शिव सलाह तेरी ना मन वसावै नाम जिन कह मन वसिया वाजी शब्द कनीरी कह नान सच्ची साहिब क्या नाहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुरबान किया गुरु विटहो जिस दियां वड्याईया कह नानक सुनो संतो शब्द रूप यारू साचा नाम मेरा आधारू वाजी पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजी कला जित कर धारिया पंच दूत दवास कीते काल कंट कुमारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागी कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजी आनंद सुनो वड भागी सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरी सगल बसूरी दुख रोग संताप उतरी सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत

पड़ गड्डी लदी है, पड़ परी है साथ, पड़ बेड़ी पाई है, पड़ गड़ी है खात, पड़ी है जेते बरस बरस, पड़ी है जेते मास, पड़ी है जेती यार जा, पड़ी है जेते सास ना निकले खैक गल होर हाउ मैं चखना चाक।

तू मेरा बहुमान करते, तू मेरा बहुमान, जोर तुम्हारे सुख वसां, सच शब्द निशान, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, कद ही सुरत नदिया माया मोहड़िया, दे बुझारक सारता से अखी डिठड़िया, कोई जे मूर्ख लुबिया मूर ना सुनी कहया, एक दो चौ क्या गणी सब एक साधु मुठी, एक अद नाहे रसीड़ा कवर ली जाए गुठी, भगत सच्चे दर सोंदे आनंद करें दिन रात, रंग रते परमेश्वर जन नानक तिन बाल जात, तेरा हुक्म सावने आया मैं सत कहल जो आया, नाउ बीजन लगाया आस करो हर भूल बख्श जुमहे जियो, नाउ बीजन लगाया आस करो हर भूल बख्श जुमहे जियो, सोए सुन लड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली, पांत जलंदड़ी मेरा इंद्र ठंडा, गुर दर्शन देख निहाली, वाहिगुरु जी सोरठ महला तीजा घर पहला, एक ओंकार सत गुर प्रसाद, सेवक सेव करें सब तेरी जिन शब्दा साध आया, गुर कृपा ते निर्मल हुआ जिन विचों आप कवाया, अन दिन गुण गावै नित साचे गुर का शब्द सुहाया, सेवक सेव करें सब तेरी जिन शब्द साध आया, गुर कृपा ते निर्मल हुआ जिन विचों आप गवाया, अन दिन गुण गावै नित साचे गुर का शब्द सुहाया, मेरे ठाकुर अंबारक शरण तुम्हारी, एको सच्चा साच तू केवल आप मुरारी, रहाओ जागत रहे तिनी प्रभु पाया, शब्दे हो मैं मारी गिरही मैं सदा हर जन उदासी, ज्ञान तत्व विचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया, हर रख्या और धारी ए मनुआ दै दिस धाम दा, दूजा भाए खुआया मन मुख मुगध हर नाम न चेतै, बिरथा जन्म गवाया सतगुर भेटे ता नाम पाए, हो मैं मोह चुकाया हर जन साचे साच कमावै, गुर का शब्द विचारी आपे मेल लए प्रभ साचै, साच रख्या उर धारी नानक नामों गात मत पाई, एहा रास हमारी हर जन साचे साच कुमावा, गुर

हर हरे अमृत नाम देहो प्यारे, जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया तिनके काज सवारे। रहाओ जो जन दीन पए गुर आगे, तिनके दुख निवारे। अन दिन भगत करे गुर आगे, गुर के शब्द सवारे। हृदय नाम अमृत रस रसना, रस गावे रस बिचारे। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया, ओए पावे मोख द्वारे। सतगुर पुरख अचल अचला मत अचला, सतगुर पुरख अचल अचला मत जिस दृढ़ता नाम अधारे। तिस आगे जियो देवो अपना, हो सतगुर कै बलहारे। मनमुख भ्रम दूजे पाए लागे, अंतर अज्ञान गुबारे। सतगुर दाता नदर न आवे, ना उरवार न पारे। सर्वे कट कट रविया स्वामी, सर्व कला कल तारे। नानक दासिन दास कहत है, कर कृपा लेहो उबारे। सारंग महला चौथा, गोविंद की ऐसी कार कमाए। जो किश करे सो सत कर मानो, गुरमुख नाम रहो लिव लाए। रहाओ गोविंद प्रीत लगी अत मीठी, अवर बिस

मन हर हर कथा सुखानी रहाओ, दीन दयाल होवो जन ऊपर, दीन दयाल होवो जन ऊपर, जन देवो अकथ कहानी, संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी, हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरख मिलया सुख पाया, सब चूकी आवन जानी, नैनी बिरहो देखा प्रभ स्वामी, रसना नाम बखानी, श्रवणी कीर्तन सुनो दिन राती, हिरदय हर हर पानी, पंच जना गुर वसगत आने, तो उन मन नाम लगानी, जन नानक हर कृपा तारी, हर रामे नाम समानी, सारग महला चौथा, जप मन राम नाम पढ़ो सार, राम नाम बिन थिर नहीं कोई, होर नेफल सब विस्थार, रहाओ क्या लीजे क्या तजिए बोरे, जो दी से सो शार, जिस बिखिया को तुम अपनी कर जानो, सा शाड़ जाओ सिर पार, तिल तिल पल पल औद फुन काटे, बूझ न सके गवार, जो सो किश करे जे साथ न चाले, एहो साकत का आचार, संत जना के संग मिल बोरे, तो पावे मोख द्वार, बिन सत संग सुख किने न पाया, जाए पूछो बेद विचार, राणा राव सबे को चाले, झूठ छोड़ जाए पासार, नानक संत सदा थिर नेचल, जिन राम नाम आधार, सारग महला चौथा, कर तीजा दो पदा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काहे पूत चगरत हो संग बाप, जिनके जने बड़ीरे तुम, हो तीन स्यों चगरत पाप, रहाओ जिनके जने बड़ीरे तुम हो, तीन स्यों चगरत पाप, रहाओ जिस तन का तुम गर्भ करत हो, सो तन किस है न आप, खिन में छोड़ जाए बिखिया रस, तो लागे पश्चताप, जो तुमरे प्रभ होते स्वामी, हर तिन के जापो, जो तुमरे प्रभ होते स्वामी, हर तिन के जापो जाप, उपदेश करत नानक जन तुमको, जो सुनो तो जाए संताप, सारग महला चौथा, कर पंजमा दो पदे पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जप मन जगन्नाथ जगदीशरो, जग जीवनो मन मोहन स्यो, जप मन जगन्नाथ जगदीशरो, जग जीवनो मन मोहन स्यो, प्रीत लागी मैं हर हर हर टेक, सब दिनस सब रात, रहाओ हर की उपमा, अनिक अनिक अनिक गुण गावत, सुख नारद ब्रह्मादिक तब गुण स्वामी।

सुरा मन इशे फल पावो सबे फल पावो धर्म अर्थ काम मोख जन नानक हर स्यों मिले हर भगत तोरा। सारग महला चौथा जप मन

दर्शन को हर दर्शन को हर दर्शन को कोट कोट तेतीस सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन कर

गुणी निदान सब सृष्ट का प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाओ हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुर सो जन हर हर अमृत नाम चखासी जो जन सेवै सद सदा मेरा हर हरे तिनका सब दुख पर

कन्या जैसे संग सहेरी प्रिय बचन उपहास कहो जो सुर जन ग्रह पीतर आयो तब मुख काज लजो ज्यों कनिको कोट।

बजियो मूरत करी पलो, बजावन हारो ऊठ सिधारियो। तब फिर बाज न पयो, जैसे कुंभ उदक पूर आन्यो। तब ओह पिन दृष्टो, कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो। अंबे अंब मिलो, सारंग महला पंजमा। अब पूछे क्या कहा, लेनो नाम अमृत रस लेनो नाम अमृत रस नीको। बावर बिख स्यों गह रहा रहाओ, दुलभ जन्म चिरंकाल पायो। जातो कौडी बदलहा, काथूरी को गाहक आयो। ला दियो कालर बिरख जिवहा, आयो आयो लाभ ला बन के ताई। मोहन ठागौरी स्यों उलझ पहा, काच बादरे लाल खोई है। फिर एहो औसर कद लहा, सगल पराध एक गुण नाही। ठाकुर छोड़े दास पजहा, आई मस्त जड़वत की न्याई। ज्यों तस्कर दर सा निहा, आन उपाओ ना को सूजे। हर दासा शरणी पर रहा, कहो नानक तब ही मन छुटिए। जो सगले औगण मेट तरहा, सारग महला पंजमा। माई तीर रही प्रेह बहुत बिगा, माई तीर रही प्रेह बहुत बिरागियो। अनिक पांत आनूप रंगरे, तीन स्यों रुचे न लागियो। रहाओ निसबासुर प्रिय प्रिय मुख टेरो, नींद पलक नहीं जागियो। हार कजर बस्तर अनिक शिंगार रे, बिन फिर सबे बिख लागियो। पूछो दीन भांत कर, कौ कहे प्रिय दे सांगियो। हियो देओ सब मन तन अर्पो, शीश चरण पर राखियो। चरण बंदना अमोल दासरो, देओ साध संगत

निस्बासुर निस्बासुर निखेतर विनाशी रव शशि अरबे नादा गिर बसुदा जल पवन जायगो इक साध बचन अटलांदा आंड विनाशी जेर विनाशी उत्पज सेत बिनादा चार विनाशी खटे विनाश वाहिगुरु राज विनाशी ताम विनाशी चार विनाशी खटे विनाशी इक साध बचन नेह चलादा राज विनाशी ताम विनाशी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल विनाशी इक साध बचन आगादा आपे आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कही भांत रे प्रभ नानक।

ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाओ। जहां बीसर है ठाकुर प्यारो तहां दुख सब आपद। जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद। जहां श्रवण हर कथा न सुनिए तै महा प्यान उद्यानद। जहां कीर्तन साध संगत रस जहां कीर्तन सार संगत रस तह सगन बास फलानद। बिन सिमरन कोट बरख जीवे सगली औध ब्रिथानद। एक निमख गोबिंद भजन कर तो सदा सदा जीवानद। शरण शरण शरण प्रभ पावो दीजे साध संगत किरपानद। नानक पूर रहो है सर्व में सगल गुणा बिद जानद। सारग महला पंजवा। अब मोहे राम परोसो पाए जो जो शरण परयो करुणा निद। ते ते पवे तराए रहाओ सुख सोयो अर सहज समायो सहसा गुरे गवाए। जो चाहत

चरनी चलो मार्ग, चरनी चलो मार्ग ठाकुर के, रसना हर गुण गाए, देखियो दृष्ट सर्व मंगल, देखियो दृष्ट सर्व मंगल, रूप उल्टी संत कराए, पायो लाल अमोल नाम हर, छोड़ न कतहु जाए, कवन उपमा

सुख का स्यों वर्ण सुनावत अनद विनोद भेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाओ विषम पई भेख विषमादी पूर रहे किरपावत पियो अमृत नाम अमोलक

अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगट्यो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंका निर्गुण निरंकार अविनाशी अतुलो अतुलो तुल्यो ना जावत कहो नानक अजर जिन जरिया तिस ही को बन जा बन आवत।

अमृत मन ते डार है, ओडे बस्तर काजर मह परिया, बहर बहर फिर चार है, काटे पेड़ डाल पर ठांडो, खाए खाए मुस्कार है, गिरियो जायर सातल परियो, शिटी शिटी सिर पार है, निर्वैर संग वैर चाहे पहुंच न सके गवार।

सिमरन जाके आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ। अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवे तिस ही त्रिपतास, जन्म जन्म के किल विखनासे आगे दरगाह होए खलास, शरण तुम्हारी आयो।

सदा मंगल गो मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग सोग तेरे मिटे सगल, अग्र निमख ही है हर नाम त्याए, रहाओ छोड़ सियाणप बहुत चतुरा।

सगल उदारे संग के पय पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिन स्यों गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े है पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिन की तूर बांशे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सारग महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याए एक पलक सुख साध समागम कोट बैकुंठ पाए रहाओ दुर्लभ देह जप होत पुनीता जम की त्रास निवारे महापतित के पातिक उतरे हर नामा उरतारे जो जो सुने राम जस निर्म

निकट सुनो और पेखो नाही, परम परम दुख परिया, होए किरपाल गुर लाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया। एक निमख जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिनस लख बरिया, साध संगत की पीर जो पाई, तो नानक हर संग मिरिया। सारग महला पंजमा, आब क्या सोचो, सोच बिसारी, करना सा सोई कर रहया, देना बलहारी रहाओ। चौहों दिस फूल रही बिखिया बिख, गुरमंत्र मुख गरुड़ारी, हाथ दे राख्यो कर अपना, ज्यों जल कमला अलपारी। हो नाही किश मैं क्या होसा, सब तुम ही कल तारी। नानक भाग परयो हर पाशे, राख संत सदकारी। सारग महला पंजमा, अब मोहे सर्ब उपाव बिरकाते, करण कारण समरथ स्वामी, हर एक स्ते मेरी गाते रहाओ। देखे नाना रूप बहुरंगा, अन नाही तुम पाते, देहे आधार सर्ब को ठाकुर, जी प्राण सुख दाते। प्रम तो हार जो परयो, तो गुर मिल चरण पराते। कह नानक मैं सर्व सुख पाया, ए सुख बिहानी राते। सारग महला पंजमा, अब मोहे लब दियो है हर एका, गुर दयाल पए सुखदाई, अंदुले मानिक देखा रहाओ। काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया, बुद्ध बिगास बेका, ज्यों जल तरंग फेन जल होई है, सेवक ठाकुर पै एका। जैते उठ्यो तेही आयो, सब ही एके एका, नानक दृष्ट आयो सब ठाई, प्राण पति।

दर्शन को कुर्बानी, बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे देहा प्रे अंक समानी रहा छूटर ते गुर किए सुहागन हर पायो सुगढ़ सुजानी जे कर मैं बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बस आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन मानिया सब चुकी कान लुकानी सारग महला पंजमा अब मेरो पंचा ते संग टूटा दर्शन देख।

गुर बह पुकर प्रभ सेवा लाए, सद दयाल हर टोला रहाओ। प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रतपालक, मोहे कलत्तर सैत सब गोला। मान तान सब तू है तू है, एक नाम तेरा मैं ओला। जे तख्त बैसाले तो दास तुम्हारे, घास बटावे के तक बोला। जन नानक के प्रभ पुरख बिदाते, मेरे ठाकुर अगै अतोला। सारग महला पंजमा, रसना राम कहत गुण सोहन। एक निमख उपाय समावे, देख चरत मन मोहन।

जाइए, एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मिल मत बुद्ध पाइए। गुण निदान नानक प्रभ में लिया, सगल चुकी मोहताइए। सारग महला पंजमा।

सगल खलासी रहाओ। अवर न को सुजै प्रभ बिन, कहो को किस पै जासी। ज्यो जानो त्यो राखो ठाकुर, सब किच तुम ही पासी। हाथ दे राखे प्रभ अपने, सद जीवन अविनाशी। कहो नानक मन आनंद पया है, काटी जम की फांसी। सारग महला पंजमा, मेरो मन जत कत।

गवन नाथोरी पूजा चकर वर्त नेम तपिया पूहा गैल ना छोरी अंध कूप में पतित होत जग संतो करो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी सारग महला।

सदा तुम ही पत राखो अंतर जामी जान जिन संतन जान्या तू ठाकुर ते आए परवान जन का संग पाये बड़ पागी नानक संतन कै कुर्बान सारग महला पंजमा करो गीत दयाल संतो मोरी तुम समरथ करो गत दयाल संतो मोरी तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ जन्म जन्म के बिखे तुम तारे सुमत संग तुम्हारे पाई अनेक जोन प्रमते प्रभ बिसरत सास सास हर गाई जो

कै बचन जप्यो नाओ नानक प्रगट पयो संसार सारग महला पंजमा हर जन छोटिया सगला आप ज्यो जानो त्यों रखो गुसाई पेख जीवा परताप रहाओ गुर उपदेश साध की संगत बिनस्यो सगल संताप मित्र सतर पेख समत बिचार्यो सगल संपाखन जाप तपत बुजी शीतल आगाने सुन अनहद बिस्म पै बिस्माद आनंद पया नानक मन साचा पूर्ण पूरे नाद सारग महला पंजमा मेरे गुर मोरो सैसा उतारिया तिस गुर कै जा।

सहज समाए आनंद आनंद गुण गाया बहा पकर कड लीने अपने ग्रह अंध कुपते माया कहो नानक गुर बंधन काटे।